जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जाने हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा,

होवै, जो हर पावै त्यो रखियै। मेरे हर जियो सबको तेरे वस, असा जोर नहीं जे किच कर हम सकै।

ना जैसे बाणी विच कम्स अप जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू ना छुटे है निकट ना जाइए दूत दैट बाणी इज तरमराज सेइंग दिस दैट बाणी गुरु साहब इज क्वोटिंग व्हाट तरमराज सेड टू हिज हेल्पर्स द एंजल ऑफ डेथ द गॉड ऑफ डेथ तरमराज इज टॉकिंग टू हिज मिनियंस एंड ही सेज वेयर द सेंट्स आर मेडिटेटिंग अपॉन गॉड्स नेम जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत विद दैट कीर्तन इज गोइंग ऑल द टाइम ना हो आई कांट गो देयर तरमराज कांट कम देयर ना ना तू यू कांट गो देयर ईदर निकट ना जाइयो दूत डेथ कैन नॉट गो देयर फॉरएवर एवर मोर द पर्सन विल लिव ऑन हु लिव्स इन कीर्तन दे वोंट सफर रीइनकार्नेशन दे विल गो ऑन एंड लिव फॉरएवर कीर्तन सिंगिंग प्रेज़ेस सेइंग वाहेगुरु दिस विल प्रिवेंट The thing that we fear from ever touching us. Death will come, but not that kind of death that we have to come back again. We'll get the right kind of death. The whole world is scared of death. That's what Kabirji says, na? Everybody is scared of death, but not Kabirji. Because he knows what dying is. Yeah? Jis manne te jag dare, mere man anand, Kabirji says. The whole world is scared of dying, but to me it sounds like bliss. Because marne hi te paiye, puran paramanand. Because when we leave this body, then we can merge back with Waheguru if we're blessed to sing His praises while we're alive. Otherwise, it's going to be background again. And who knows if we're going to get the human body. We're lucky right now to have the human body. Let's make use of it. Sare aankho, Waheguru. Waheguru. Waheguru. Waheguru. Waheguru.

जाने में दिलंब है, नाम बिना बिरथा सब जाए। हुनवते हर नाम ना बीजियो, अगे पुखा क्या खाए।

जाने में दलम्ब है, नाम बिना बिरथा सब जाए। हुनवते हर नाम ना बीजियो, अगे पुखा क्या खाए।

बंद पाया मेरा सतगुर पूरा, होई सर्ब कल्याण। बंद पाया मेरे सतगुर पूरा, होई सर्ब कल्याण।